न चिंता कछ लोक कहे, न चिंता बनता सुध मीत है, प्रवृत्त माया संबंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपालक है। अनित वितंग अनित चितंग अनित आसा बहुविध प्रकारं, अनित हेतंग अहं बंधं परम माया मलनंग विकारं, तिरंत जो अनेक जुषरागन न सिमरंत मलीन बुद्धियं। हे गोविंद कर्तमया नानक पद उदाहरण, साध संग में ग्रंथ गिर पद पातालं, जलंत दे दीप वैश्वंतर महंत अघातोयं तुरंगं, दुखंत गृह चिंता जन्म ता मरण। अनक साधरंग न सिद्ध अते नानक अस्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वजन, घोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविखयादं, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट भस्मं क्रोत, अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत आग खंडन, रिद्व संत भय पीत दूत है, कर्म करत महानिर्मल है, जन्म मरण रहंत श्रोता

पूर्ण पुरुष भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है।

लभं तरंग रूपं नाच दुर्लभं दुर्गराजन नाच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नाच दुर्लभं स्वाश अंबर है नाच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभं बनता विलास है नाच दुर्लभं विद्या प्रवीण नाच दुर्लभं चतुर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत दृष्टं।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है उपदेशं।

कंद मूलं बसंते समीप केह रहे ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं छिद्रं कोड़ विघ्नं अपराधं किल बिख मलं परम मोहं

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान।

नरक विश्राम भोजोन्नी परमामण चेत हरण त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण तब भय विमुंच।

करो हे शरण जोग दयाल दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरण रमण गोपाल कीर्तन साल संगेण तरण नानक महासागर पै दुत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोई ज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहाल लिया कर्ण न सुनगी नाद कर्ण मुंद कालिया।

न है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

कर कर पीव है निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इउं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया,

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिनाहो। कबीर जग में चेत्यो जान के, जग में रहो समाए, जिन हर का नाम ना

ओ मांग सवारे बिखे कहो, ओ सिमरे हर नाम, कबीर तूनी पाई थित पई, सतगुर बंदी तीर, कबीर हीरा बन गया मान सरोवर तीर, कबीर हर हीरा जन जहोरी ले के मंडे घाट, जब ही पाई है पारखू तब हीरन की साट, कबीर काम परे घर सिमरिए ऐसा सिमरो नित, अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरे बित, कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम, कबीर जे मार्ग पंडित गए

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

चोर सहारे शब्द की, ताश गुरु मैं दास, कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होवे। जा कारण तू बांग देहे, दिल की पीतर जोए, शेख सबूरी बहारा के हज काबे जाए। कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई।

कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई होए गई पाठ शार। कबीर निर्मल

जंगल क्या पवे, वन कंडा मोड़े हे, वसी रब हयाली है, जंगल क्या ढूंढे हे, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, हर डूंगर पवे ओम, आज फरीदे कूजड़ा सह कोहा थी ओम, फरीदा राती वड़िया

प्रसाद तोई पुरख सेवर साचा जाका एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कबजन कल सबुदी कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव केरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरे नखेत्र अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर सूर नाम उलस है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शेषन काज समुद्रया चवरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर केल बखवरया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपी सुरमन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सदकर संग उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया नाम कित संसार किरण सुर तरसाख उत्तर दक्षिण पुब जेस पश्चिम जस पाख है जमत इवसक अथ जित नाम हरदे निवास है सुन नल गण गंधर्व छे दर्शन असस

हो पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल पान तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गनंतन आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितो सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलो पुरख भेटो अविनाशी। आदले भगत जित

सदगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नहीं संभव्यो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पाए सदगुर शब्द

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास सनकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा थाप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निध अप्यो अप्यो हर नाम अखय निध चो जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुरसेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कहे एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बोविद वर्णं सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जाग रचा कुंडलनी सुरजी स संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सभी ऊपर मन भज क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंतकार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सकै ईस बम ज्ञान ध्यान हरत हीए चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेग तरयो हर नाक्ष हरयो नख बदार जियो संक चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन पुंद दसन प्रिया सिद कंठ मार मुकट सीस मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਂ ਕੁਵਰ ਨੇਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜ੍ਹੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਹ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਪੁਰ ਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਨ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀ।

आर सदकार मन गए अंध श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रसदा सलामत कहे न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत तिनको मोह भया मन मत का 84 लख जोन उपाई रिजक दिया सबहु को तदका सेवक कहे भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जाल आपे थल थमन आपे किया कड़कड़ बासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे विचार हो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तो जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाईगे परमार्थ तत् संगत स्थिती मन खजना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आज कोई न जाने शिव ब्रह्म तर ध्यान नित्य जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गण समथ तरन तारन प्रसोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा रसना रसे श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्ते बसे गुरु सुमरत गए करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कहो हुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण कहो मथरा जन जान कई जी साच तो और कछु ना विचारन कहो हर ना भूत बड़ो कल मैं अव सागर पार उतारन कहो संत ही सत संगत संग

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगासे। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नहीं संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में।

पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो। एक ओंकार

का तान फिटक फिटका कोड़ बदियां सदा सदा अभमान पाए एते जाहे वीसर नानका एक नाम सा बुद्धि जाली है एक रह तत ज्ञान माथे जो तुर लिखया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखया सो वर्तदा सो बुझे जिसनू नजर होए जिन्नी नाम सारिया कूड़े लालच लग तंदा माया मोहनी अंतर तसना अग जिन्ना वेल ना तुंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिली वग साग आप उलाए पुलिये आपे मेल मिलाए नानक गुरमुख छुटी है जे चले सतगुर पाए साला की सालाना ही सच्चा साला है नानक सच्चा एक दर बीबा पर हर आग नानक जय जय मैं फिरो तह ते सच्चा सोए जय देखा ते एक है गुरमुख प्रगट होए दुख विसारण शब्द है जे मन मसाए कोए गुर कृपा ते मन वसे कर्म प्राप्त होए नानक हो करते खप मोए खून लखे संख सदगुर मिले सो उबरे साचे शब्द अलंक जिन्ना सदगुर

पाए मन मुगसे ती संग करे मोह कालख दाग लगाए मोह काले तिन लोभियां जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उतर है जन नानक हर गुण गाए तुर हर प्रभ करतै लिखिया सो मेटना ना जाए जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हथ ना कथा उपाय बार पाखंड सब कर्म करे मन हिरदय कपट कमाए खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खरोआ आए नानक की प्रा बेनती हर भावे बख्श मिलाए मन आवन जान।

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ऊना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब के सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो शब्द न की तो विचार ओए मानस जू

हरमंदर वस्त अनेक है नावनिद नाम समाल तन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल वड भागी गढ़ मंदर खोजया हर गिरदे पाया नाल मानमुख दहे दिस फिर रहे आत तिसना लोभ विकार माया मोह ना चुकई मर जम्मे वारो वार सतगुर सेव सुख पाया

बिन सतगुर किने न पाया, कर कर थके विचार। नदर करे जे अपनी ता आपे लहे सवार, नानक गुरमुख जिनी त्याय आए से परवान। जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मै लेवेस, नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर के उपदेश। चारे कुंडा चे पवे वेद पढ़े जुग चार, नानक साचा पेटे हर मन वसे पावे मोख द्वार। नानक हुकुम वरते खसम का मद पवी फिरे चल चित, मानमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित। गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित, जमन मरण का मूल कटी है ता सुख हो भी मित। भुलिया आप समझाए सी जा को नदर करे।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण वखरा सिर संजोग बखाण जिन एह लिखे।

जात पहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले।

जी तू निश्चर करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैं डासाई जो तो पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो किरपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुद बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर नाम कोए तू कर कर वेख्या जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवर डै पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चल हम देखा तै डूबी अले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हाँ जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पही प्रापत मान खुदे हुरिया गोविंद मिरन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत पा

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति।

मेरे निर्भव का सोहेला हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुवार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेलो देहो सजन आसी सड़िया जो होवे साहिब स्यो मेलो। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन राग आसा।

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेरे साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तने अंतरा हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुवे दुख पावै जम काल सह है सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है।

संत टहल की बेला, यहां खाट चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद कटै दिन सुरण आरे, मन गुरमल का सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए

फेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला। मोती ता मंदर उस रह रतनी ता होहे जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। मत देख पूला विसर तेरा चित ना आवे नाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपुछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ। धरती ताही

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण है, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घट है गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिल है अंक सह लिड़िया, मिलकै करे कहानियां समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी हमें मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए। रहाओ केता आखण आखिया आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता को सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खेलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, जो तिस पाना सो थिए अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त वेसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है, मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ उचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुटसी सहज मिलया सुख होए, निज कर महल पछाणिया नदर करे मल धोए। बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास, एको शब्द विचारी है अवर ते आगयास। नानक देख दिखाई है हों सत बलिहार जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठी है पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान।

लोभे लगा लोभान, शब्द ना पीजै सागता दुर्मतया मन जान। साधु सतगुर जे मिले ता पाइय गुणी निदान, मन रे हो मैं छोड़ गुमान। हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगह मान, रहाओ आराम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान, नित अहनिस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम। कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान, भरमे पूला दुख घणो जम मार करै खुलहान। मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान, एथे तंद पिटाई है सच लिखत परवान। हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी प्रधान, नानक नाम ना विसरै कर्म सचै निशान। श्री राग महला पहला, एक तिल प्यारा विसरै रोग वड्डा मन माहे। क्यों दरगह पत पाई है जा हर ना वसै मन माहे। गुर मिले सुख पाइए अगन मरे गुण माहे। मन रे अहनिस हर गुण सार जिन खिन पलना।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटेओ सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले, तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो, वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल, अगे साहो सुजान है, लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो, सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है, क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है।

जे तू साहिब आवै रोहे तू ओना का तेरे ओहे असी बोल विगाड़ विगाड़ै बोल तू नदरी अंदर तो लै तोल जै करनी तै पूरी मत करनी बाजो कटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणै बुझै सोए गुर प्रसाद करे।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो

श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह कहाओ कुटारा कर सके ज्यो साहेब राखे त्यों रह इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आन जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानन साहेब तो मिलै रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगे बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहजे रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेवया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहार नै जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहारै जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करै नव खंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए। श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच

गुरमुख पावै कोए, नाम निदाना खुट है वड भाग प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं अहंकार, हर जियो सदा त्याए तू गुरमुख एकंकार रहाओ। गुरमुखां के मुख उजले गुरसबदी विचार, हलत पलत सुख पाए दे।

समझाले सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है आपे बस करे। कहना किशु ना जा वही जिस पावे तिस दे। नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए। श्री राग महला तीजा सच्चा साहेब सेवी है सच वड़े आई दे। गुर प्रसादी मन वसै हो मैं दूर करे। ओह मनता अवतार है जा आपे नदर करे। भाई रे गुरमुख हर नाम ते आए। नाम निधान सद मन वसै।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी, मनमुखे अंद न चेत ही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच हमें दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना, मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार, पिरका महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ गुरमुख सदा सोहा।

अंतरा दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना, तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे, गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाए।

कुदम करे पशुपंखिया दिसै नाहीं काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। कड़ी मोहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाहीं गावार। उठ चलिया पछताया।

साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए, मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाई सदा संग आगे ले छाए रहाओ। दुनिया किया वड्याईया कम न आवै काम, माया का रंग सब फिका जातो बिनस निदान, जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेण का अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रव आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार, ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगले उपाव त्याग, गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ। एको पाई मित एक एको मात पिता, एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता। सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता, घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप। जी जन तो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप। पार ब्रह्म प्रवेक है दूजा नाही कोए, जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए। गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवां, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सिउ लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्द सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरियां, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भक्त जना को राखदा।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए नेदारा आधार जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईए मन की लहे परांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधिए।

मन्य पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान प्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हम मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंतन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिलै वडियाईया दरगै पावै थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किछ सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटां के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक

पूरा थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन धारिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए करते हथ वड्याईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बिबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुर जीवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत।

अंबड़ कोई न सकई हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरना पावनी जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभा वे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ साची प्रीत न तुटई साचे मेल मिलाओ सबद रती मन वेदया हो सतबलिहारै जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनौ साचो मरै ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी धन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत नारावीया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार ने डरिया डर जानी है बाजगुरु गोबार आसर करता।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाईए सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए गुर की सेवा गुर भगत है। विरला पाए कोए रहाओ सदा सुहाग सुहागनी। जे चले सतगुर पाए सदा पिर नहीं चल पाईए। ना ओह मरे ना जाए शब्द मिली ना विछड़े। पिर कै अंक समाए हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आईए शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिर समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है।

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा भाव न जाने, सतगुर भेटे निर्मल होवा, अंदन नाम वखाणे। एको पड़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने, खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम भुलाए, सतगुर सेवै ता गत मित पावै, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सो चित लागे, आवन जान रहाए, पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम भुलाए, लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए, जा नाव चेतै ता गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिलै सुभाए, मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए, सतबलिहारी गुरे अपने विटाओ, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता, प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता, श्री राग महला तीजा, सहजै नौ सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम भुलाए, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए, पाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए रहाओ। सहजे गाव्या थाए पवै, बिन सहजै कथनी बाद, सहजे ही भक्ति उपजै, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजै जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए, सहजे ही गुणी उचरै, भक्त करे लिवलाए, शब्दे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए, सहजे काल विडारिया, सशरण आई पाए, सहजे हर नाम वसिया, सच्ची कार कमाए, सेवड़ भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए, माया विच सहजन उपजै, माया दूजै पाए, मनमुख कर्म कमावणे, हम मैं जलै जलाए, जमण मरण ना चुकई, फिर आवै जाए। त्रेह गुणा में सहज ना पाई है, त्रै गुण परम भुलाए, पढ़िए गुणिया क्या कथिए, जा मुंडो कुथा जाए।

आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार। सहजे अदिष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार, सबना जिया कायक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार। पूरे शब्द सलाही है जिसदा अंत ना पारावार, ज्ञानियां का तन्ना

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर विचरे, तपे तपी सर जोगिया, तीर्थ गमन करे, खटकर में खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चित ना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद, जियो जियो सगली कीत, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता खड़र सातल दीत। काया रोग ना छिद्र केश, ना किश काड़ा सोग, मृत ना आवी चित तिस, एनिस भोगे भोग। सब किश की तो ने अपना, जिये ना संक धरिया, चेतना आयो पार ब्रह्म, जम कंकर वस परिया। कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवै साधु संग, ज्यों ज्यों ओ वधाई है, त्यों त्यों हर स्यो रंग। दुहा सिरिया का खसम आप, अवरना दूजा थाओ, सतगुर तुठै पाया, नानक सच्चा नाम।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देवे दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुरग मछ पयाल जियो, हौ वारी हौ वारणै, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुख आया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथिया फिरे निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सोहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे कार सियाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सब सह ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करै निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत तरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

मात पिता सुत ने हो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छुटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटे जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आप कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुणयंत्र नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे दे वैले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखां दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखां। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर। हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखम तार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाति फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे। दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हों कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रह, कहु न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाय। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

पाए, जप तप संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमरत सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवै मन की जूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम ना चेतै, बहु कर्म कम

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नामै अगै आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखनी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौपे कंत कहो, सब दे तरे प्यार। बिन नामै कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावी सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाएंदे, डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोय। हर आवै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड्याई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख ली ओए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो ए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार। पिर छोड़िया कर अपना, पर पुरखे नाल प्यार। तृष्णा कदे न चुके, जल्दी करे पुकार। नानक बिन नामै कूप सोहणी, पर हर छोड़ी पतार। महला तीजा। शब्द रती सोहागणी, सतगुर कै पाए प्यार। सदा रावे प्रे अपना, सच्चे प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी, सोभावंती नार। नानक नाम सोहागणी, मेली मिलन हार। पौड़ी। हर तेरी सब करै उस्तत, जिन फाथे काढ़िया। हर तुदनो करै सब नमस्कार, जिन पापै ते राखिया। हर निमाणिया तू माण, हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया। हर हंकारियां मार निवाए, मन मुख मूड साध्या। हर भगतां दे वड्याई, गरीबा नाथिया। श्लोक महला तीजा। सतगुर कै पाणे जो चलै, तिस वड्याई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै, मिट न सकै कोए। किरपा करे जिसे अपनी, तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है, गुरमुख पूजै कोए। महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अंधन हर लिवतार। माया बंदी खसम की, तिने अगै कमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़िया, हुक्म सुबारण हार। गुर प्रसादी जिन बुझिया, तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी, तिन मारे जम जंदार। गुरमुख जिनी आराध्या, तिनी तरिया पौजल संसार। सब औगुण गुणी मिटाया, गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी। हर की भगतां प्रतीत, हर सब के जानदा। हर जेवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय, जा नाही धर्म मारदा। सच्चा साहेब सच न्याओ, पापी नर हारदा। साला हो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा, यंत्र रखा और तार। साला ही सो प्रभ सदा सदा, गुर कै हित प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल लए, साई सुहागण नार। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नजर करे। मानस ते देवते पए, त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन, गुर कै सब तरे। नानक सहि समायन, हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी। हरे अपनी भगत कराए, वड्याई वे खालियन। अपनी आप करे प्रतीत, आपे सेव कालियन। हर भगतां नो दे आनंद, थिर करी बहालियन। पापिया नो ना दे थिर रहन, चुन नरक कोर चालियन। हर भगतां नो दे प्यार, कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला।
ਕਬਦ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਾਇਆ ਕਸਾਇਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉਤਮ ਸੇਈ ਜੇ ਪਾਪਾ ਪੰਦ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਨਵਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ ਅਠਾਰਹ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ ਅਨਹਦ ਤੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਿਤੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਦਾਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾਇਆ ਸੁਧ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਾਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਓ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਰਲੋਚਨ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਆ ਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੈ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਪਟ ਨਰਾ

पूरा जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुरमत बिन सीक बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवां विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तुद ते आई एहो दान मुहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया पलिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिसदा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो

वन त्रिण त्रिपवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया। गुरमुख नानक तसै अराधे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो दियो पाए, जिजत पाना तित तलाए, सब किश कीता तेरा होवै, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुर पूरे वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण ब्रह्म ने अधारा, भगत जीवै गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै, साध संग जन मरण मिटावै, आस मनोरथ पूर्ण होवै, भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किश्मित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी, खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकर अत भारी, तुमरे करतब तुम ही जाना, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मन सगली खोवै, भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पय निहाला जियो। माज महला पंजवा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांस सह सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब तरापे जियो। सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद ते सदा ते आई, जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोख संतापे जियो। सास सास नानक सालाहे, सिमरत नाम काटे सफाहे, पूर्ण आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावै गुण अगम्या पारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याई है जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावै, मन चिंदे से ही फल पावै, सिमर साहेब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाईऐ, सब पौ बिनसै हर हर त्याईऐ, जिन सेव्या सो पार ग्रामी, कार्ज सगले थीए जियो। आए पया तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यो लह मिलाई, कर कृपा प्रभक्ति लावो, सच नानक अमृत पीए जियो। माज महला पंजवा, भय कृपाल गोविंद गोसाई, मेघ वरसै सबनी थाई,
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਜੋ ਬਾਰਕ ਮਾਤਾ ਸੁਮਾਰੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਓ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸੋ ਤਿਸ ਦਾ ਧਿਆਈ ਜੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਸਗਲੋ ਉਦਾਰੇ ਜੀਓ ਰਾਖ ਲਈਏ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਉਤਰ ਗਏ ਸਭ ਸੋਖ ਸੰਤਾਪੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੰਤਨ ਹਰੀਆਵਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੇ ਜੀਓ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़े अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाने जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किशु ना जापे अपने संतान आप सहाई प्रभु परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद भाव है सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्य जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडी ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवे ना लाई जियो

संत जना की धूड़ नित बांछै नाम सचे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइयै जे सिमरत वार निचल पाइयै नानक ओ प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सबाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा। हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावणिया। हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर कै शब्द नाम निशाणे सबना कादर लेखा सच्चै। छूटस नाम सुहावणिया मनमुख पूला ठौर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामै को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया सकत कूड़े सच ना भावै दुबदा बांदा आवै जावै। लिखिया लेखना मेटै कोई गुरमुख मुक्त करावणिया पेयड़ै पिर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवै ताही। अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बखसावणिया पेयड़ै जन जाता प्यारा गुरमुख बूझै तत बिचारा। आवण जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावणिया गुरमुख बूझै कथ कहावै सच्चे ठाकर साचो पावै। नानक सच कहै बेनंती सच मिलै गुण गावणिया माज महला तीजा कर पहला। कर्म होवै सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए। हौ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया। गुरमती प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखै ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावै सहजे पद करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुरप्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंग राता दर सच्चा सोजी पावणिया पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी। अग्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवण जावणिया गुर सेवा ते सदा सुख पाया। हाँ मैं मेरा ठाक रहाया गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजरक पाठ खुलावणिया। हाँ मैं मार मन वसाया गुरचरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तु दै ताई जिस बख्शे तिस दे वडियाई। नानक नाम ते आए सदा तू जम्मण मरण सवारणिया। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमे अपारा बिन तकड़ी तोलै संसारा। गुरमुख होवै सोई बूझै गुण कै गुणी समावणिया। हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया। जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै जिसनु नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथै हथ पाए पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी पूरे करम मिलावणिया। पेयड़ै तन अंदन सुती कंत विसारी अवगण मुती। आंदन सदा फिरै बिल लांदी बिन फिर नींद न पावणिया। पेयड़ै सुदाता जाता हौ मैं मार गुर शब्द पछाता से सुहा।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सा लाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कणेरे तू एको नहीं चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै न मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ

माया मोहे जोहे जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजे पाए दुख पावने आ। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावने आ। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाई है, गुर चरणी चित लावने आ। माझ महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही। सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन। गुरमत मन वसावने आ। हाँ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावने आ। जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावण्या। राओ सब को तेरा भगत कहाए, से भगत तेरे मन पाए। सच बाणी तुदै सालाहन, रंग राते भगत करावण्या। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूकै फेरा। जा तुद पावै ता नाए रिचावै, तू आपे नाउ जपावण्या। गुरमत्ती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया। एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावण्या। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौनिद नाम वस्या मन आए। पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावण्या। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता। तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावण्या। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावण्या। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे प्रवाहे। नानक नाम वसै मने अंतर, गुर सबदी हर मेलावण्या। माझ महला तीजा, तेरे भगत सोहै साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती। गुण कै गुणी समावण्या। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावण्या। हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हौ मैं मार मिलावण्या। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावण्या। तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाने सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत्या मिलावण्या। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावण्या। शब्द विसारण।

लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड कमावे, जल जावे कूड चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागद कल मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरप्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगति राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंदन हर गुण गावणिया, रहाओ आपे करता कारण कराए। जित पावे तत्कार लाए, पूरे पा

आपे करे कराए आपे, आपे थापो थापे आपे, तू ते बाहर कछु ना होवे, तू आपे कर लावण्या। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरमुख सहज समावण्या। आपे उच्चा उच्चो होई, जिस्या विखाले सो वेखै कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई, गुर प्रसादी कर ही मह पाई, सदा सिरे वी एक मन त्याई, गुरमुख सच समावण्या। हाँ वारी जियो वारी, जग जीवन मन वसावण्या। हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावण्या। रहाओ करी मैं तरती तौल पाताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता, गुरमत

गुरमुख होवै सो हम मैं मारे सचो सच ते आवणिया काया अंदर पाप पुन दुए पाई दुही मिलकै सृष्टि उपाई दोवै मार जाए एकत घर आवै गुरमत सहज समावणिया घर ही माहे दूजे पाए अनेरा चानण होवै छोड़ै हो मैं मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंदन नाम ते आवणिया।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख बन जे सदा वापारी लहा नाम सद पावने आपे वथ राखे आपे दे गुरमुख बन जै के ई के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावने हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया अंदर नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने जम जा गाती दूजै पाए कर लाए नाम पूले देस जाए कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने पेयड़ प्रचेते नाही दूजै मुठी रोवै ताही खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने पेयड़।

आपे देवै सद बुलाए, अपना नाउ मन वसाए, नानक नाम मिलै वडियाई, अंदन सदा गुण गावणिया। माज महला तीजा। ऊतम जन्म सुथान है वासा, सतगुर सेवै कर माहे उदासा, हर रंग रहै सदा रंग राते, हर रस मंत्र बतावणिया। हाँ वारी जियो वारी, पढ़ बुझ मन वसावणिया, गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है, दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ अलख अपेओ हरया समाए, उपाय न किती पाया जाए, कृपा करे ता सतगुर भेटे, नदरी मेल मिलावणिया। दूजे पाए पड़े नहीं बूजे, त्रिबद माया कारण लूजे, त्रिबद बंधन टूटे गुरसबदी, गुरसबदी मुक्त करावणिया। एहो मन चंचल वस ना आवै, दुबदा लागै दै दिस्तावै, बिखका कीड़ा बिख मै राता, बिखी माए पचावणिया। हां हों करे तै आप जनाए, बहु कर्म करै किछ थाए न पाए, तुझते बाहर किछु ना होवै, बख्शे शब्द सुहावणिया। उपजै पचै हर बूजै नाही, अंदन दूजै पाए फिराही, मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावणिया। पिर पर दे सिंगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए, हलत ना सोभा पलत ना ढोई, बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरलै जाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, अंधन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावणिया। सब मैं वरतै एको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सो है, कर किरपा आप मिलावणिया। माज महला तीजा। मनमुख पढ़े पंडित कहावै, दूजै पाए महा दुख पावै, बिख्या माते के सूजै नाही, फिर जूनी आवणिया। हों वारी जियो वारी, हों मैं मार मिलावणिया, गुरसेवा ते हर मन वसिया, हर सहज पियावणिया। रहाओ वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कथिया शब्द सुहावै, गुरमति मन सचो भावै, सचो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावणिया। जो सच रते तिन सचो भावै, आपे दे न पछोतावै, गुर कै शब्द सदा सजाता, मिल सच्चे सुख पावणिया। कूड़ कसात तिन्ना मैल न लागै, गुरप्रसादी अंदन जागै, निर्मल नाम वसै कट पीतर, ज्योति ज्योत मिलावणिया। त्रै गुण पड़े हर तत न जाणै, मूलो पूले गुर शब्द न पछाणै, मोह व्यापे के सूजै नाही, गुरसबदी हर पावणिया। वेद पुकारै त्रिबद माया, मनमुख न बूझै दूजा पाया, त्रै गुण पड़ै हर एक न जाणै, बिन बूझे दुख पावणिया। जात पावै ता आप मिलाए, गुरसबदी सहसा दुख चुकाए, नानक नावै की सच्ची वडियाई, नामो मन सुख पावणिया। माज महला तीजा। निर्गुण सरगुण आपे सोई, तत् पछाणै सो पंडित होई, आप तरै सगले कुल तारै, हर नाम मन वसावणिया। हाँ वारी जियो वारी, हर रस चख साध पावणिया, हर चख है से जन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। रहाओ सो निह कर्मी, जो शब्द बिचारे, अंतर तत् ज्ञान हों मैं मारे, नाम पदार्थ नौ निध पाए, त्रै गुण मेट समावणिया। हौ मैं करै निहकर्मी ना होवै, गुर प्रसादी हौ मैं खोवै, अंतर विवेक सदा आप विचारे, गुरसबदी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगै नित गुरमुख होई, इसनान करै सदा दिन राती, हौ मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर्वसै हौ मैं मार, अहनिस प्रीत शब्द साचै, हर सर्वासा पावणिया। मनमुख सदा बग मैला, हौ मैं मल लाई, इसनान करै पर मैल ना जाई,
ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਘੜ ਚਾਨਣੇ ਆਪ ਪਛਾਨਣਿਆ। ਆਪ ਉਹ ਪਾਏ ਤੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਜਨ ਲੇਖੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦਿਸੈ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵਲਾ ਬਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤਲਾਏ, ਹਰ ਦਰ ਮਹਿਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤੁ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਸਿਆ ਸੰਸਾਰੇ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਇਕ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਪੇਈੜੈ ਤਨ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਫਿਰ ਪੱਛੋ ਤਾਣੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੈ ਗਾਵਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇਈੜੈ ਤਨ ਕੰਤ ਸਮਾਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ। ਪਿਰਕੈ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ। ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਮਿਰਸਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निहकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित आवत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, गुरमुख कीर्तन।

सगली बणत बण आई आपे आपे करे कराए थापे एक स्ते होयो अनंता नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवा प्रभ बनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुखदाता तू करै सोई सुख पावणिया हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावणिया तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवै ना लावणिया रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा थान थनंतर तू है इको एक वरतावणिया सगल मनोरथ तू देवनहारा भगती पाए भरे भंडारा दया तार राखे तुद से पूरे कर्म समावने अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवने आ।

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया, जिस अगे सब निवान, हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन, रंग सबे नारायण है जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धणी जिसकै पाग मथन, आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास, दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास। जिहा बीजै सोलुण है मथे जो लिखियास, रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास, कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार, हरे अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख या पार, हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार, नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार। सावन तिना सुहागनी।

नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवां मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाण विछड़ी दोष न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंतन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सुवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मालिक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर हेवै कर गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला पहले प्यार लगा थन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे पहिया पाबी बेब चौथे प्यारो पन्नी खेड़ पंजवें खान पीण की तात छेवें कामना पुछे जात सतवें सांझ किया करवा।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मुयाना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, बाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बीस रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूण सुजाणी है। पौड़ी तुद आपे जगत पाए कै तुद आपे तंद लाया। मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया। तिसना अंदर अगन है न तिपत भुखा तिहाया। सह सायो संसार है मर जमै आया जाया। बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया। गुरमती नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना। पैरा बाजो चलना मन हथा करना। जीबै बाजो बोलना ओ जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा दिसै सुनिया जानिया सौ ना पाया जाए। रोहला टुंडा अंदला क्यों गल गै तहाए। पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे। नानक है सियाणिए इव कंत मिलावा होए। पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया। हम मैं गुरु ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया। ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया। इकना बख्शै मेल लै गुरमति तुद लाया। एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया। होर कार वेकार है एक सच्ची कर लाया। पुत कलत कुटुंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया। ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चे न समाया। श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आल। कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार। बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी दुरमत मत विकार। ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार। महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै। अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै। अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने। हम मैं विच दुख काले नानक गुरमुख हम मैं टुटै ता हर हर नाम ते आवै। नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै। पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग। जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया। सुख उठे रोग पाप कमाया। हर खो सोग विजोगो पाए पाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए। मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै। महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नामुक सच्चा लाए। ओ हरे मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए।

या मन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली, की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह के हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिया चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है, फरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक दी बदे पार एक ना ताखती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ। महला पहला। वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिया वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला

गौड़ी महला पहला, डर कर कर डर डर डर जाए, सो डर केहा जित डर डर पाए, तो बिन दूजी नाहीं जाए, जो कुछ वरतै सब तेरी रिजाए। डरिया जे डर होवै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरै ना डूबै तरै, जिन किश किया सो किश करै, हुक्मे आवै हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए, हंस हित आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान, पौ खाना पीना आधार, विण खादे मर होहे गवार।

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामन कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओह ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर ब्रह्म।

तू दाना बिना साचा सिर मेरा गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड़ियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अरपै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ ब्याल एतुत मनमुख बांधे काल अहनिस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रैगुण हितकार चारे वेद कथा आकार तीन अवस्था कह वखियान तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जां कह हृदय वसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा महे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुखदाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेत।

लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया।

माता गौड़ी चेती महला पहला मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंता ता पंच चेले वस की जय रावल एह मन की जय डंडा ता जोग जुगते पावस्ता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुडाया जे गुर पाई है हम गुर कीनी गंगा ता त्रिपवन तारण हर स्वामी एक ना चेतस अंधाता कर पटंब गली मन लावस संसा मूल ना जावस्ता एक चरणी जे चित लावै लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ काया कमली हंस याना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नांगी दा जय फिर पाछा पिछतानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समावे लखना लखना जाई रे रहाओ सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंडो चाई रे रात अनेरी सूझ सनाही लज टूक समूसा पाई रे मन मुख करे तेता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जोतन किया सोई होवा कीर्तना मेटिया जाई रे सुबर परे ना होवे ऊने जोरा ते रंग लाई रे तिन की पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थामो हम आए अगन बिंब जल पीत।

जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। गौड़ी बैरा गण महला पहला रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। नाम ना जानिया राम का मूड़े फिर पाछा पिछता है रे रहाओ अंता तानो तरनी तरे अंत ना चाहया जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए कर्मा उपर निबड़े जे लुचे सब कोए नान करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे। गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो। मैं बनजार नराम की तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ कोकल होवा अंब बसा सह शब्द विचार सह सुभाए मेरा सहो मिले दर्शन रूपिया पार। मछली होवा जल बसा जी जंत सबसार उरवार पार मेरा सहो बसे हो मिलोगी बहां पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे पव जाए नानक सदा सोहागणी जन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी देव की महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिए करते का होई बिचारो तितकर गावो सोहला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे नरपाव का सोहला हों वारी जाओ जित सोहले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालिया नो देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़िया जो हवै सैब स्यो मेल। कार कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन। राग गौड़ी गुआरेरी महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वैसोई मेरा प्रभु सब विद्या पे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पैरा चै सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुभाए मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाह अंत ना पारा वार मेरा प्रभु बख्शे बख्शन हार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसै सच सोए साच वसै साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते सच।

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जे शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हम मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रह जे सतगुर पावै। मंतन राता नाम सुभावै रहाओ। एक गावै एक भगत करे, नाम ना पावै बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उरतार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचे टपे भगत ना होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे दे वड्याई। गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरम करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैंगल मिकदारा, गुर अंकस मार जीवालन हारा। मन या साधु साधे जन कोए, अचर चरै ता निर्मल होए। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हम मैं विचों तजे विकार। जो तुर राखिया नु मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणै।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचो भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भोजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमें मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

गुरमुख नाम निदान लै दरगह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जोनी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे वेकार जन नान करमी पाईया नु हर नामा भक्त भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेयै पिर वसै कहो किद बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मिलाइऐ रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाईऐ हों मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईए संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिलो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

हो मूड मुग्ध निस्तारे, सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन ध्याया, सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया, हर दया धार प्रभ बेनती हर हर चेताया, जन नानक मंगै तूड़ तिन जिन सतगुर पा।

बाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूर्ख हर हर जब पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर भजमन मेरे तार पौजल तू तारी रहाओ। सन्यासी विपूत लाए देह सवारी, पर तरे त्याग करी ब्रह्मचारी, मैं मूर्ख रियास तुम्हारी, खत्री कर्म करे सूरतन पावै, सूद वैस पर कृत कमावै, मैं मूर्ख हर नाम छड़ावै, सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक देवड़ियाई, मैं अंदले हर टिक टिकाई, गौड़ी गुआरे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तार पौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सतसंगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावै हर हर नामा, तिन दासन दास करो हमरा मां, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावै, सो जन हमरा मन चित पावै, जन पग रेण वडभागी पावै, संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, गौड़ी गुआरे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नाए, सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए, ते हर जन हर मिलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ। जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावै, कामन प्रीत जा पिर कर आवै, हर जन प्रीत जा हर जस गावै, सारंग प्रीत बसै जल तारा, नारपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपै निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे, गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, गौड़ी गुआरे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रपाए, भूखे प्रीत होवै अन्न खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिलिया गाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिकसै देखै माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए पूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी गुआरे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लै जाई रहाओ। जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई, गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

तारी ऐसा मेरा राम रहया परपूर निकट लसै नाही हर दूर रहाओ। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे वेखै विकसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारंग अमृत धारा हर अमृत आपी आवनहारा हर आप करे आपे निस्तारा हर आपे बेड़ी तुलहा तारा हर आपे गुरमति निस्तारा हर आपे नानक पावै पारा गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी जैसी तू रास दे तैसी हमले हर नावन जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावै दे रास रे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जिहै वणज हर लाया फल ते हा तिन पाया।

हर हर नाम जपत जनतारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भए, जन्म जन्म के किलवख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा, करने हर न बुझै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे ते तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार, अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु सियाण पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह सोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख, नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम।

नाम औखद सोई जन पावै, कर कृपा जस आप देवावै, हर हर नाम जाकै हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना, अनक रूप देख न पतियाना, पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी, ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते, त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते, रहाओ ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै गृह उन दुख सहाम, ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा, ज्यो राखा खेत उपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसकै पालै कछु ना पड़ै, जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, आप बिनाहे

बहुर बहुर उवाहू लपटेरा, पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, हो न पाइये राम के दासा, कवन सो बेद जित राम गुण गाए, कवन सो मातो जित तरह हे माए रहाओ, जो पलाई सो बुरा जाने, साच कह सो बिखे समान।

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी प्रमता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस पोक करे बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागै सेव, हम ते कछु न होवै देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच वखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सच धर्मा। सर्व निधान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेव के अरदास। मन ता निर्मल होए हर रंग, सर्व सुखा पावो सतसंग। नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तैं चाखे, निमख ना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत होए रहे बिस्मादो। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हूं जाइय, साध संगत वडभागी पाइय। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे

तू वड साहो जाके कोट बन जा रे, कमर सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साज दिखलाया, कर कृपा जा मिले साहे, कहो नान गुर कै वे साहे, गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी, रैन दिन सो रहे करंगा, प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे, गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी, अवर न जाने बिन निरंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग हर जुगते, दिसै सब मैं सब ते रहते, पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना, आगाद बोध किस्मत नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पै दूत व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माई। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रे में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना पाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संगो दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्वनिधान, सावत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब तन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। जाकै वस खान सुल्तान, जाकै वस है सगल जहान, जाका किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेराट है, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़ तो मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अहमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्याव, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नींदया, सा संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, सा संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ। सहज सूखया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै भरम, आवन जान रखे कर करम, पेखै बोलै सुने सब आप, सदा संग ताको मन जाप, संत प्रसाद भयो प्रगास, पूर रहे कै गुणतास, कहत पवित्र सुनत पुनीत, गुण गोविंद गावे नित नीत, कहो नानक जाको हो कृपाल, ते जन कीसा पूर्ण काल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बंधन तोड़ बोलावै राम, मन में लागे साहि ध्यान, मिटै क्ले सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुर कही है, सो सुखदाता जे नाम जपावै, कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ, जिस होए दयाल तिस्याप मिलावै, सर्वनिदान गुरु ते पावै, आप त्याग मिटै आवन जाना, साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा, जानी ऊपर प्रभु दयाल, जन की टेके गोपाल, एका लेवे को मन पाओ, सर्वनिदान जन कै हर नाओ, पार ब्रह्म से लागी प्रीत, निर्मल करनी साची रीत, गुरपुरै मेटिया दिहारा, नानका प्रभ अपरिया पारा, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जिस मन वसै तेरा जन सोए, जा कै कर्म प्राप्त होए, दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै, अमृत नाम हृदय हर जापै, पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है, गुरपुरे ते ए मत पाई है, रहाओ करण करावन हार दयाल, जी जंत सगले प्रतपाल, अगमा गोचर सदा बेअंता, सिमरमना पूरे गुरमंता, जाकी सेवा सर्वनिधान, प्रभ की पूजा पाई है मान, जाकी टहल न बिरथी जाए, सदा सदा हर के गुण गाए, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सुख निधान हर लख स्वामी, जी जन तेरी सरनाई, नानक नाम मिलै वडियाई, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जी जुगत जा कह है हाथ, सो सिवरो अनाथ को नाथ, प्रवचित आए सब दुख जाए, पैसा बिन सहर कह नाए, बिन हर पौ काहे का मान, हर बिसर तो काहे सुख जान, रहाओ जिन तारे बहुतरण आगास, जा की जोत जी प्रगास, जा की बख्शना मेटै कोए, सिमर सिमर प्रभ निरपव होए, आठ पहर सिमरो प्रभ नाम, अनक तीर्थ मजन इशनान, पार ब्रह्म की सरनी पाहे, कोट कलंक।

हमारा अंतर्यामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे, गौड़ी महला पंजवा। जाको तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा, माधो जाको है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जाके हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए, जाको तुम दीनी प्रभ धीर, ताके निकटण आवे पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया, गौड़ी महला पंजवा। दुलभ देह पाई वडभागी, नाम ना जपै ते आत्म घाती, मर ना जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार, जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद महे समाया, गौड़ी महला पंजवा। काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साक, काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत, मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी महला पंजवा। वड़े वड़े जोधी सै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग, कौन वड़ा माया वड़ियाई, सो वड़ा जिन राम लेवलाई। रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चले तृष्णा नहीं बुझै, कहो नानक्यो तत् विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा। पूरा मार्ग पूरा इसनान, सब कुछ पूरा हृदय इनाम, पूरी रही जा पूरा राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूर्ण राजयोग, हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करण हार सदवसै हदूरा, कहो नानक मेरा सदगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिट अग कोट, संत प्रसाद जन मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम। रहाओ संत कै संग मिटिया हंकार, दृष्टिया वै सब एक अंकार, संत सो प्रसन्न आए वसपंचा, अमृत नामृत लै संचा, कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है, हर सिमत त्रास सबनास है, सा मत पूरी जित हर गुण गावै, वड्डे पाक साधु संग पावै। रहाओ साध संग पाइए निदनामा, सा संग पूर्ण सब कामा, हर की भगत

लाए। गुर का शब्द तेरा संग सहाई, दयाल पाए सगले जी पाई। गुर पूरा जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा, अनक रसा खाए जैसे ढोर, मुहकी चेवरी बांध्यो चोर। मृतक देह सा संग बिहुना, आव जात जोनी दोखी ना रहाओ। अनक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत महे डराया। सगल शरीर आवत सब काम, नेफल मानख जपै नहीं नाम। कहो नानक जा कहो भय दयाला, सा संग मिल पजै गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, काल कलेश गुर शब्द निवारे।

अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुनि मन आसा करी दया सदगुरु गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फरमाए इच पुनी पूरे गुर मिले नानक तेज अन सफल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ सात शीतल पय कीनी प्रभदात

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम निर्णा आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवां, भले दिनस

सुख सहज सात आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभु अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीओ प्रप्यारी, रहाओ सुख सह।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक से ही जन पूरे।

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रम बिन से गाए गुणनीत। ऊठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जमने डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभुदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महा गरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही। रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय समाल, घर आए गोविंद लै नाल। हर हर नाम संतन कै संग, मंत्र राता राम कै रंग। रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबख सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां, हर सिमरन नाही। कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरे है दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वड़पागी निश्चल थान, जह जपिया प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक कौ मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। साधु संग सिमर गोपाल, बिना मैं झूठा तन माल। रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा। जग मैं आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी तां का मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों सागत नहीं संग। ओह बिखई ओ श्राम को रंग। रहाओ मन असवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पचारे नारी। बैल कौ नेत्रा पाए दुहावै, गऊ चर सिंह पाछे पावै। गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावै बिन पूंजी। नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा, सामत निर्मल कहियत धीर, राम रसायन पीवत बीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट। रहाओ
सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सबते उच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लए।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रव अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ, शीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा। तन ओ मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईए, रसना राम नाम जस कहिए रहाओ। तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जप

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवै हथ दाना। वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जियां कुहत ना संगै प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे का सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानके ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संगराते पाहे ना जलै, हर संगराते माया नहीं छलै। हर संगराते नहीं डूबै जलाओ, हर संगराते सफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संगराते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साध का मंता। हर संगराते जम की नहीं त्रास, हर संगराते पूर्ण आस। हर संगराते दुख ना लागै, हर संगराता अंदन जागै। हर संगराता सहज कर वसै, हर संगराते परम पौन सै। हर संगराते मत उत्तम होए, हर संगराते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रम मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम कर

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत और दो तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु से मन माने। आगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक को प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरुदेव बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे अराध मेरा मन धीरा रहाओ। आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पय सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवकी आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए। रहाओ आप मन बसिया करना हारा, पै बिरसे आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे। कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा शरणाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को

नानक मांगत नाम आधारे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण।

दास दासन की अनक पांतिस करो नेहोरा। तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। एक बस बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यो पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई सहज पया प्रम खिन मैं नाठा। मिल ज्योति जो समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो रहाओ। जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो। कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निध नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठे जायो। एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सुरै नारे मन गुरमल का इसवारे। रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला। इहां खाड़ चलो हरलाहा आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियाए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जहां को आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्ग।

बोले, वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते, अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते। भ्रम पौ काट किए नह केवल, जब ते हमें मारी जन मरण कौ चूको सहसा, साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मिरिया। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कमनरी जावे तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ। सुर्ग पयाल मृत पू मंडल, सर्व समानो एक है ओही, शिव शिव कर तो सगल कर जोर, सर्व माया ठाकर तेरी दोही। पतित पावन ठाकर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान ध्यान नानक वड्याई, संत तेरे स्यों गाल गलोही। गौड़ी महला पंजवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ। अनक जन्म बजोनी भ्रमिया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है, देहो दर्श हर राया। सोई होवा जो तिस पाणा, यवरना किन्हीं कीता, तुमरे पाणे परम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे, कृपा निदयाला, राख लेहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतपाला। जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कै पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बाछै।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज अनंत ना संग उन संसार अवर नाम दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनके उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की ऋण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोबन अवध जो दिस सब केश युग में काटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ। नौ खंड पृथ्वी इस तन में रविया निमख निमख नमस्कारा दिख्या गुर की मुंद्रा कानी दृढ़ो एक निरंकारा। पंच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग्नि आज्ञाकारी तब निर्मल योगी थिए। परम जराय चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भूता जो ठाकर मस्तक लेखिया। जै पौ नाही तहा आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा योगी वडभागी पेट माया के बंधन काट सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चट। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जां को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो ते तंते गुर शब्द दीपक प्रगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जां को साध संगत विश्वासा। तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोइथ साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा। गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्तिया गाए नानक हर जियो ताको देवै जाको हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहया ना सरण प्रभ तोरी अंध कू मैं हाथ दे राखो कछु सियाण उगत न मोरी। रहाओ करन करावन सब किस तुम ही तुम समराथ नाही अनहोरी तुमरी गतमित तुम ही जानी से सेवक जिन पाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रवराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाह जैसे दृष्ट्यो चन चकोरी। राम संत मैं भेद किश नाही एक जन कई मैं लाख करोरी जा कही है प्रगट प्रभु होवा अन दिन कीर्तन रस नर मोरी। तुम समराथिया पार अतूचे सुखदाते प्रभ प्राणिया दोहरी नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राते संतो निभाए ले हो मोको पुरख विदाते ओढ़ पहुंचा बो दाते। रहाओ तुमरा मर्म तुमाही जानिया तुम पूर्ण पुरख विधाते राखो सरना ना दीन को करो हमारी गाते। तरन सागर बोध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे ते ते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समर्था सबके तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जनो चले हमारे साथे। निर्गुणी आरे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा गौड़ी महला पंजवा सहि समायो देव जा को सतगुर पय दयाल देव। रहाओ काट जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरे दिखायो। पयो प्रगास सर्प उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मंत्र बतया अन पै ठहरायो।
मान आग्या सर्व सुख पाए दुखै ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाइये रे जो प्रभ करै सोई पल मानो सुख दुख ओही त्याइये रे कोट पतत उधारे खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर दुख पंजन स्वामी जिस पावे तसै निवाजै रे सबको मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तस करते पूर रहे रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास ताकी सरनाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबू न मनो बिसारे इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ महा कष्ट काटै खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरनी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक ते राखै भव जल पार उतारे चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे काम क्रोध लो मोहे मन लीनो निर्गुण के दाता रे कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन मोलक साध संगत जप एक खिना रहाओ सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बहु लोग पोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोवा चंदन दे फूलिया सो तन तर संग रूलिया मोहे मोहे आ जाने दूर है कहो नानक सदा दूर है गौड़ी महला पंजवा मन तार तर बेहर नाम नो सागर लहर संसा संसार गुरबोत पार ग्राम नो रहाओ काल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया बसरियत कनी उबरे जप जब हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेट प्रंपो खोया कहो नानक एक ते आया।

रहाओ। आनक जुगत नहीं पाया गुर चा कर लै लाया, मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल सा दिया। बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले, नानक तिन मुखी उजले। गौड़ी महला पंजवा, जिया रे ओला नाम का। अवर जे करन करावनो, तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है, वड़े पाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है, आगे तिल नहीं मानी है। आहू बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा कर, नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा, बार न बलिहार न लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया रहाओ। कर्ण करावन तुही एक, जी जंत की तुही टेक। राज जोबन प्रभ तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुनी। इहां उहां तुम रखे, गुर कृपा ते को लखे। अंतर जामी प्रभ सुजान, नानक तकिया तू ही तान। गौड़ी महला पंजवा, हर हर हर आराधिय। संत संग हर मन वसै, परमोह पौसा दिए रहाओ। वेद प्राण सिमरत बने, सब ऊच बराइत जन सुने। सगल अस्थान पै पीत चीन, राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिर, गोविंद लोक नहीं जन्म मरै। बल बुद्ध सियान पहों मैं रही, हर साध सरन नानक गही। गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुन गाइय। नीत नीत हर सेवी है, सास सास हर त्याई है रहाओ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्दा नेरा प्रम नसै। संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है। जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्न ते। नानक कहो प्रमया कर, मेरे मंत्र वसै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिय एक नाम। इहां सुख आनंद कना, आगे जी के संग काम रहाओ। कटिय तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राजयोग। हर रस जिन जन चाखिया, ताकि तृष्णा लाथिया। हर विश्राम निध पाया, सो बौर नकत ही ताया। हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक ता का पौ गया। गौड़ी महला पंजवा, जा को बिसर राम नाम। ताहू को पीर, साध संत मिल हर रवै। से गुणी गहीर रहाओ। जा को गुरमुख हृदय बुद्ध, ता कै कर तल नवनिध सिद्ध। जो जाने हर प्रभ तनी, किश नाही ता कै कमी। करने हर पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया। हर तन जा कै गृह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा, गर्ब बड़ो मूल इतनो। रहन नहीं गहो कितनो रहाओ। बेबरजित बेद संतना, उवाहू स्यों रे हितनो। हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो। हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो। नानक उदरे साध संग, कृपा निध मैं दितनो।

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोर। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोर। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जाके सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम लय। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिन मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपव निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करी है।

कीर्तन मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ कोट जोरे।

पर ग्रह बेकारी बुरा पला नहीं सुजी है। अनक बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं गाया मन बिखै ही मैं लुजी है। जां कौरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन्म दा।

ओहि पाठी ओहि पोचा ओहि प्यारो ओहि रुचा मन ओहो सुख जातो सहज केल अनद खेल रहे फेर भय मेल नानक गुरशब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयान रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बस्त है।

क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागौ पाई जियो। पोथी पंडित बेद खोजनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पत तपवित लग गुर के पैरे जियो। भ्रमपो काट किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो। रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लई जियो। चरण पखार करी ने सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो। दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कई है जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो। हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन मे

एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नामा प्राणी को हर जस मन नहीं आवै। अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावै। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावै। मृग तृष्णा ज्यों झूठो एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुगत का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करो निमखना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो ता सो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहो ना लावै, नानक मुक्ताहे तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो एह बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कट नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ता को नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मूत का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निध सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छुट्टी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हास्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्या गया। पाए बसे जमका पौ भाग्या साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखो कैसा सागर डूगर निरपो वैसा मुवे कहो कहो मारे कौन निडरे कहो कैसा डर कवन शब्द पछाने तिने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रया समाई निज कर ब्याप रया निठाई उस्त कर है केते मुन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआरे री महला पहला ना मन मरे ना कार्ज होए मन वस दूता दुरमत दोए मन माने गुरते एक होए निर्गुण राम गुणे वस होए आप निवार बिचारे सोए रहाओ मन भूलो बोचते विकार मन भूलो सिर आवै भार मन माने हरेक अंकार मन भूलो माया कर जाए काम बिरुदो रह ना ठाए हर पज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर कंचन सुतनारी बहु चिंता पड़ चल हारी जुवे खेलन काची सारी संपो संची पै विकार हरक सोक उबे दरबार सुख सहजे जपरदै मुरार नजर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नामै सब दुख निवास मनमुख मूड़ माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचल तावत फुन तावै साचे सूचे मैल न पावै नानक हर गुण गावै गौड़ी गुआरे री महला पहला हौं मैं करत्यां न सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावै दोए सो कमावै तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहने बिरथा जाए गुरमुख दिसै सह सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरणगत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अनपूजा, संत हेत प्रवतर पवन धारे, आत्म चीने सो तत् बिचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ता के दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारै है,

आप लाए आपे मत देवै, दुर्मत हर नाखस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा धारी।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्या गै कवरे, पाए मिलाए सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरे गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना, मिर्ग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पर तृप्त ना कभू होई, पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन।

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावै नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सा

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया। हम हर राखे

सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो पुले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरि अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार, अफर्यो काल कूड़ सिर मारे। निश्चल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी शेख पेख फकीरा, वड्डे कहावै हो मैं तन पीरा, काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जिहवा यार नैनी, कानी काल सुनै बिख बैनी, बिन शब्द मूठे दिन रहनी, हृदय साच वसै हर नाए, काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते सुख कही है, गुरमत चालो निचल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत् विरोलै, सतगुर दीख्या दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्राह्मणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। सासन दुखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम

चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसे, पोखर निर्वरुलिय मखन नहीं रिसे। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीना आप कहो सो अपरियापारा। सब आपे आप वरदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिया सब ब्रह्म समाया। अरा गौड़ी ग्वारे री महला तीजा अष्टपदिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे पूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबे ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोहवाकार, मर मर जमै वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मै काल ना खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नामै को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उत्तर सपार। साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जियो राखो हृदय उतारा, गुरमुख शोभा साज दुबारा। पंडित हर पड़त जो

वै सद ही निर्मल सही सुमावै हर कथा सुने से तनवंत दिसै जुग माही तिनको सब निवै अंदर पूज कराही सहजे गुण रवै साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाने अंतर तामस आप ना पछाने तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाने गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे मेरा प्रपाया गुर कै शब्द सी दे सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावै सह सुभाए बिन गुर साचे परम पलाए मन मुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हम मैं मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई सतगुर सेवै से जन निर्मल पवित्ता मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरे मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हृदय नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द बजाए सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर सोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा

मन करहला अत निर्मला मल लागी हम आए। परतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए। मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पलाए। ओ पाए कितना लबई गुर हृदय हर देखाए। मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए। घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए। मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए। पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए। हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल लै जाए। मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए। एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए। हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए। मन करहला गुर मन्या गुरम कार कुमाए। गुर

तीर्थ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत प्रसादन भोगा, गवन करै गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर कर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निश्चर सजथाना, तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सदवसै, तह पौ परमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता, तै सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करै तां का विचार, कहो नानक जिस कृपा करै, निश्चल थान साध संगत रै, गौड़ी महला पंजवां, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोय जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै रहाओ, जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगै सजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निश्चल तनी, जो इस मारे सो वडभागा, जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सुगयानी, जो इस मारे सो सहित्यानी, इस मारी बिन थाए ना परै, कोट कर्म जाप तप करै, इस मारी बिन जन्म ना मिटै, इस मारी बिन जमते नहीं छुटै, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जौला, जां कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जां की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महला पंजवां, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारै नाही होर रहाओ, वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखिन मैं उदरै, कोट मजन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिनस जाए माया के हेत, हर अबनासी तुमरै संग, मन मेरे रच राम कह रंग, जा कह काम उतरै सब भूख, जा कह कामना जो है दूत, जा कह काम तेरा वड़ गमर, जा कह काम होवै तू अमर, जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कह दफ्तर पुछै ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा, जा कह ऊन नाही काहू बात, एक आपा ने कह पात, जा कि दृढ़ होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर नाही को मूड़ा, ना को हीण नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी, त्यों जीवै सागत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा थिरथिया रहाओ, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास, बिन सिमरन पै कूकर काम, सागत बेसवा पूतन नाम, बिन सिमरन जैसे सींग शतारा, बोले कूर सागत मुखकारा,
ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗੰਧਬ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਹਿਟ ਫਿਰਾਹੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹੇ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਮਖਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਜਮਕੀ ਫਾਸਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲਹਰਾਓ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਚੂਲਾ ਵੋ ਪਾਖਾ ਮਹਾਂਯਗਨ ਤੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਸੋ ਨੀਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ਜਿਨ ਗੁਰ ਮੋਕੋ ਦੀਨਾ ਜੀਓ ਆਪਣਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁੱਲ ਲੀਓ ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਭ੍ਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥਾ

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अन काज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

तज हो मैं गुर ज्ञान भयो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग न गयो, सगत मूल लगे पचमोयो। मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मध्य कने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निध पावे अतुल सुखो। नैन अलोबो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लो मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो। दुख अंधेरा करते मिटयो, गुर ज्ञान दृढ़ायो, दीप बलयो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरा मन सब सुख पायो रहाओ। बल तो जल तो तौकिया, गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो। पावक सागर गहरो, चर संतन नाम तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच, प्रभ गह पूजा अपायो। पाओ खंडन दुख भंजनो, भगत वच्छल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीनो, समरथ संत ओटायो। निर्गुणी आरे की बेनती, देहो दर्श हर दायो, नानक शरण तुहारी, ठाकुर सेवक द्वार आयो। गौड़ी महला पंजवा, अरंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हों संचो हों खाड़ता, सगली अवध बिहानी। रहाओ हों सूरा प्रदान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत्या चार कुलीना, मन में होए गुमानी। ज्यो उलझायो बाद बुद्ध, काम रत्या नहीं बिसरानी, भाई मीत बंद पसखे, पाचे तिन्हू कौ संपानी। जित लागो मन बसना, अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सोच कर्म कर, ए बंधन बंधानी। दयाल पुरख कृपा करो, नानक दा दसानी। जुमला एक ओवंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। राग गौड़ी पूर्वी संत महला पहला, मुंद रहन दुहेलड़िया जियो, नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो, पिर कह हावै तन थी दुबल कंत हावै, केव नैनी देखै। सिंगार मिठरस भोग भोजन, सब चूटक तैना लेखै, मैं मत जोबन गर्भ गाली, दुधा थनी ना आवै। नानक सातन मिलै मिलाई, बिन पर नींद ना आवै। मुंद निमानड़िया जियो, बिन तनी प्यारे, क्यों सुख पावैगी बिन उरतारे। नाहा बिन कर वास नाही, पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही, वसै सास सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमती सहु जानिया, नानक नाम ना छोड़ै सा तनु, नाम सहि सुमानिया। मिल सखी सहेलड़ी हो, हम पिर रावेहा, गुर पिछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया, मन मुखी पछताणिया, निस जातो रह अस्थर, जाम सच पछाणिया। साच कीमत सदा नौतनो, शब्द नहो नवेलो, नानक नगरी सहज साचा, मिलो सखी सहेलियो। मेरी इच पुन्नी जियो, हम कर साजन आया, मिलवर नारी मंगल गाया। गुण गाए मंगल प्रेम रैसी, मुंद मन यो माहो, साजन रहंसे दुष्ट व्यापे। साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया। नानक पिरतन करे रलिया, इच्छ मेरी पुनिया। गौड़ी संत महला पहला, सुन नहा प्रभु जियो,

नह नींद आवै प्रेम भावै सुन बेनंती मेरी आ बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुर लाए नानक सातन मिलै मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए पिर छोड़ी आड़ी जियो कमन मिलावै रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै सबदे सुहावै ता पत पावै दीपक देह उजारै सुन सखी सहेली साज सुहेली साचे के गुण सारै सतगुर मेली ता प्रदावी बिकसी अमृत बाणी नानक सातन ता प्रदावे जा तिसकै मन भाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़िया रे क्यों खूलै गल जे वड़ा जियो बिन गुरे अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान्या नेक नावन क्यों अंतर मल तोवै नाम बिना गत कोई न पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाणै तेरा नाम सच्चा जियो सब सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वा पारो नाम का वा पार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोई ना सूजै नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुरपुरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद सात अन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिनपन रह ना सके जियो बिन हर प्यारे रह ना सके गुर बिन मैल ना पाईए जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना यगन बुझाई है हर साचा सोई तिस बने अवर ना कोई बिन सेवे सुख ना पाए नानक सातन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रहन सोहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अंदन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एकलड़ी जियो बिन नहा प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्र तारे माया मोहे खुआई कूड़ विगुती ता प्रमुती सातन मैल ना पाई गुरशब्दे राती सहजे माती अंदन रह समाए नानक कामन सदा रंगराती हर जियो आ मिलाए ता मिलिया हर मेले जियो हर बिन कवन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोरे अंधार बिन गुर मग न पाए कामन

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइयै, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नहा प्यारी जां हर के गुण सारे, सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हो मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रही है अमृत गही है दुबदा मारने वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

पानी अन ना पावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुरे आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आ मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना फिर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सह सुमाए, दुबदा सह सुमाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कसत भरिया, गलत आई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगति मैल न जाए, नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, आन दिन दुख निवारे, अंतर महल पर रावे कामन गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहा।

राम नाम वा पाराग मैं पारा गुरमती तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे। जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता आप गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोष नाही सुखै दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलियां करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजिया दूत थाऊ गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सात सतबुद गुरदेव सात सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आदि जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसनो आपै सुनत आप ही जासन आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखमो आपै अस्थूला लखी ना जाई नानक लीला।

तंदे कहां ब्यापै ताहू जो एक छाड़ियन कतै न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए। पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बात अनक जुगत शास्त्र कर पात ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग न हो। ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै पाग मथोर। पौड़ी या जुग मैं एक कह आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रव रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई ए त्युत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए। पौड़ी एउ जी बहुत गर्ववासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट ना माए। सलोक किरत कमावन सो ब्या सोब कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करै सूफन हो। एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सक ते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम सेओ तऊ एऊ करम बेकार। बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझै सो प्रभ सधू संग लेखे गणत।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंग होया मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुभ देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरण होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया।

तैत तैत लगना नानक ठाकर सदा अलिपना श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह

होवनहार हो सदयाया, अकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय, जास रसनो हर हर जस भनिय। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म ना हारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कै ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूरै उपदेसिया, नानक जपिय नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चल्यो सब कोए। कां को मात पिता सो धिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पासे ती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंठ चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

काहू ध्यान परमत पछता पै आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलशित रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जानो नानक नाहे सुमार। पौड़ी खखा खूना कश नहीं ते

का गोविंद गुण रबो सा सा जपनीत कहां बे सा सा देह का बिलमना करे उम्मीत। नह बारक नह जोब नह बिरदी कश बंद ओ बेरा ने बूझिया जो आए पर जम फंद। ज्ञानी त्यानी चतरपेख रहन नहीं ए ठाए शाड़ शाड़ सगली गई मूर्त हां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जाको प्रै सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आना कहतो कोए आजुगा दी हुन होवत नानके कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मना एह बिन हर दूसर नाहे नह होवना जत का तो ही समाहे। कूले तो मन जवा वै सरना नाम तत् कल मैं पुनः चरना। काल काल अनक पछतावै बिन हर भगत कहां थित पावै। कोल महारस अमृते पिया नानक हर गुर जां कौ दिया। सलोक घन काले।

गंगा ग्रासे काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया सलोक चित चित वो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पै आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दैदस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिनसो सब दुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टेता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बौचितराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

हो सबजा की, ताजा मान छुटे तेरी बाकी, रण दरगह तो उसी जय भाई, जो गुरमुख राम नाम लेवलाई। रहत रहत रह जाए बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर की नींदा ते। श्लोक लालच झूठ बिखे ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हारे औखद सब कट है भाई, गुरपूरे बिन बिदना बनाई, गुरपूरे संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। पौड़ी वबा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया, गुरप्रसाद विरलै ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगलै ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हां हां करत बिहानिया, साकत मुकदया जान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु, कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना मारा दू, रूडो जे बस्यो रिद माही, ओवा की लाड़ मिर्त बिन साही, अड़ाड़ करत सगत गावारा, जे ही है अंबुद्ध बिकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट कहो, उक्त सियान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन भरे अवहारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे, सरन परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मंतन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत पुरानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, भावै खसम ता उवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता। असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राए, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लय सुमाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एना, हिकमत हुक्मना प्रपतियाना, सहस भात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चलै तुहारै साथी, साध सेवा लावै जे आपै, नानक तां को दुख ना व्यापै। सरो श्लोक हर हर मुख ते बोलना, मन उठै सुख होए, नानक सब मैं रव रया, थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कटकट सगल कै, पुर रहे भगवान, होवते आए सद सदीव, दुख भंजन गुर ज्ञान, हाँ छुटकै होए आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्म मरण, संत संग प्रताप, हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, ओरै कछु न किन्हू किया, नानक सब किछ प्राप्ते हुआ। श्लोक लेखै कतै न छूटिया, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्शलै, नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुने गार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जन सुख दिए, ताहे न जानत तत, लाहा माया कारण, दे दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ, निमखना मने बसाए, लालच झूठ बेकार मोह, या संपै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए, तुद पावै ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक
ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਭਗਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਤ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ ਅੰਤ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार हे संतें कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा

गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। एहो श्लोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरौ जास बिसम भरे कै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक तां कै लागौ पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सबके सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद महे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंत प्रभ को सिमरै से पतवंत प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहि समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार
सिमरै से जन जिन कौ प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंदना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिखना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै। जे मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कबो न धोवे, हर का नाम कोट पाप होवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध कै संग। जे मार्ग

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास्त पितर थीवे। अग्न माहे होमत प्राण, कनक अश्व हैवर भूमदान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तौपी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया उटरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए मैं शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन

है। जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राख नहारिया पार, रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्तर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप्यो तारै धोए, गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल, नानक काढ लेहो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कश कर।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोभावे जे प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगह मान पावे नानक पासे ती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे हे जे प्रसाद या पूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

रखै जे प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमहे सुमानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनियाई। साध कै संग न कबहूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।
साध कै संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रवे आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा।

तुम सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी क्या होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सज जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक हो अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पार्त्रे रूप

करै तिस दास कौ सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सोऊ कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई फन होग पसरियो आप होए अंत तरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब काब विचार है कई कोट नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत ना पावे कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब कौ हिरै कई कोट पर दुख

नानक करते की जानै करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पयो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सबहू ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगति लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रमह समात, ताका अंतना जानै कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारा एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहि समावै, अपने जन को सास सास सुमारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योत पावे सोई होग, खिन मैं थापो थप नहारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रह समाई। प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पत तो धारै, आप करै आपन बिचारै, दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे। अनजानत बिखिया मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै, परमे पूला दैदस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै।
जा को अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीस। जियो पिंड सप्तसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत या बनाई नानक जीवै देख बड़ाई। इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावै सोई फुंथियो। कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर खरख कबहू सोग हर खरंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावनहार। कबहू निरत करै बहुपात कबहू सोए रह दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की होत रवाल। कबहू होए बह बड़ राजा कबहो पेखारी नीच का साजा। कबहू अप कीरत मह आवे कबहू पला पला कहावे। ज्यों प्रभ राख तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कह। कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन तारी लावे ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू से साधु मो ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमे परमिया। नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे ज्यो प्रभ पावे तिवे नचावे। ज्योतिष पावे सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संग ते हो पावे उस स्थान ते बहुर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। मानता नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्ब गले। अष्टपदी जिसका अंतर राजा मान सो नरक पाती होवत सवान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कौ कर्मवंत कहावै जन्म मरै बह जोन परमावै। तन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै। धनवंता होए कर गरबावै तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी धर्म राय तुस करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिटै अभमान सो जन नानक दरगै परवान। कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगै कौ कैसे गवै। आपस कौ जो पला कहावै तसै पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए तब इस कौ सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे
सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय। नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए। करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग। बुझे देखे करे बिबेक, आपे एक आपे अनेक। मरे ना बिनसे आवे ना जाए, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सब के साथ। आप कीनो अपन विस्थार, सब कश उसका ओह करने हार। उसते पिन कहो किश होए, थान थन अंतरे कैसोए। अपने चल तो

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवरना राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खे

सुनत कह तो रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बस है सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जाप एको सालाहे, एक समर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राष्ट गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, पर तौ सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जांजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखे आसे जन कृपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगती तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआओ। नेत्रो पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण तोए। भक्त जना कै मंतन रंग, बिरला को पावै संग। एक बस्त दीजिए।

दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुणी यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक पर।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृष्टेता पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हर शोक कसै व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगमय पार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शर शिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किस भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करण हार नानक करते का नहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन जब अपने आप पुरत हारे तब सगन अब सगन कहां विचार है जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाला शेदा भेद समा

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो, अपने कर्तव जान आप, अंतर जामी रहो ब्याप, प्रतपाल जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जान्या, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई ना पहुंचन हार सिर उपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रिष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत नाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कटकट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तेन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसे समाहे तिसते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइये गुण अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तन में एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने सो बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाए जिस पावै तसलै मिलाए कवन निगट कवन कहिए दूर आपे आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वपूतया वरतारा सर्वनैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आमन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मद अलिप्तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इस्ते होए सो नाही बुरा ओरे कहो किने कश करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोते अपन संगराच ता की गत मित कही ना जाए दूसर होए ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक के जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन का एह सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ता के कर्म सब ते ऊच ता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय।
ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੇ ਬਹੁਬਿਧ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰਨੀਤ ਮਿਲ ਭਜੀਏ।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मंतन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। ऊठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत कौ तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पहे जिनमन वसिया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तो घणो सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहों करत विहाय, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनके उपाय। आद ब्याद उपाद रस

को खाट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहे गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खाट शास्त्र कह सिमरत कथे अनेक उत्तम उच्चो पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसयो पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिराए।

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर शोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेवा।

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मोकड़ न सके उसदा काला पया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आग सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिले रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुष्टी गुर के फिटके जे ओस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरा सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो झाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जन लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वडभागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर ज्योत प्रगासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डै खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया एको ओत पोत एक देखिया एक मन्या एको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस दिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपो नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब सियों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कौ हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाहे। महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सोजननी जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन ना मारा दिया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छाए हर सतगुर मिलो दया कर जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलेओन मुख गुरमुख नाम ते आए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाए सी जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखन कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा गुरसिखा कै मन भाव दी गुर सतगुर की वडियाई हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगह ते मुख उजले बहु सोभा पाई जन नानक मंगै धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वडियाई सा लाही सच सलाह सच सच कीमत किनै ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आगाई एहो हरा से ही जान दे जो गूंगे मिठाई खाई गुरपूरा हर प्रभ सेविया मन वजीवा दाई। श्लोक महला चौथा जिन्ना अंदर उमर थल से ही जान सूलिया हर जाने से ही बिरो हाओ तिन विटो साध कुम कोलिया हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया जो सिख गुर कार कमावे हाओ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलू लै जोर ते तिन पिनी हर रंग चोलिया कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा औगणी भरिया शरीर है
क्यों संतों निर्मल होए। गुरमुख गुण में हाजी है मलह मैं कड्डै धोए। सच वणंजै रंग स्यों सच सौदा होए। तोटा मूल न आवै लाह हर पावै सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी सलाही सच सलाहना स सच्चा पुरख निराले। सच सेवी सच मन वसै स सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी आराध्या से जाय रले सच नाले। स सच्चा जिनी ना सेव्या से मनमुख मूड बेताले। ओह आल पताल मोह बोल दे जो पीतै मद मतवाले। श्लोक महला तीजा गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। भाणै चलै सतगुरु कै ऐसा सिंगार करे। सच्चा शब्द पतार है।

मंत्र बताए हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया।

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओन तिन्ना दरगे ले छाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह।

आस कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां रहंदे खोंदे निंदक मारिया।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा न होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदर ला

बिखै कौ रतन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हरका नाउ पौड़ी। एह निशानी साध

गौड़ी कबीर जी जाकै हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर्य चंद करे उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचे ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर भले असवारा, बेद तेवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जे मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूक टलाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, तां सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है, देखो बिचारी, इसनो क्यों आखिए क्या करे विचारी। पई निरासी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है शब्दी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहां किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किसमाही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मंड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगर पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ता को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिए तोल ना तुलिए पाचन से अडाई। जो कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यों कासी उपदेश होए मान समर्ति बार।

जेते जतन करते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमूल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरे मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बौरा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मुकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अस्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लाल चस्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिनस जाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावे ता हुक्म नावे इस बेड़े को पार लंगावे गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਜੀਅਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਗਾਓ। ਰਹਾਓ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਉਰਜ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ, ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਪਤ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਰਹਾਓ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੀਐ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ, ਜਿਉਂ ਸੰਪੈ ਤਿਉਂ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ, ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜਿਹ ਕਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਗੌੜੀ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਲੇ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਤੈ ਸੋਇਓ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਰਹਾਓ, ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਐ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁਖ ਕਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਏ। ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਰਚੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ, ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਰਹਾਓ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ, ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੀ ਜੈ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀ ਜੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ। ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ, ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ। ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ, ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡ ਭਾਗੋ, ਰਹਾਓ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰਿੰਗ ਧਾਰ, ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ, ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ, ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇ।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखर अंते डरप सती के साचे पांडे डगमग छाड़े मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊचा गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौकर देख

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुण गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्याग कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जह बोल तै मन न रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ताको पुकार, भटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेट ताहे ना माना, ओवंकार लख जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, त चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, त चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा। जजा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लह। चजा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगर ही पावा। नन्या निकट जो घट रहो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा उपायो ताहे। टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कतै ना जावा। रह लपट घट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजै डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे। टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्रिय निग्रह करई पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक बिचार है ता फल फंक सब तन फार है बब्बा।

मन माना। है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोग कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिति कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिति सात वार, कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे, ओ आपे करता आपे दे। थिति अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ, परवा प्रीतम करो बिचारो। घट में खेल अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए। आद पुरख में रह समाए, द्वितीया दोहकर जाने अंग। माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए। अकुल निरंजन एक कह पाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै। आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास। बाहर पीतर सदा प्रगास,

पंच है पंच तत् विस्तार, कनक कामनी जोग व्यवहार, प्रेम सुधा रस पीवै कोए, जरा मरण दुख फेर ना होए, छट खट चक्र शहु दिस्ताए, बिन पर चै नहीं थिरा रहाए, दुबदा मेटख मांग रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो, सात समकर बाचा जान, सात सतकर बाचा जान, आत्म राम लिहो प्रवान, छूटे संसा मिट जाहे दुख, सुन सरोवर पावो सुख, अष्टमी अष्ट तात की काया, ता मैं कुल महान निद्राया, गुरगम ज्ञान बतावै भेद, उल्टा रह अपंग अशेद, नौमी नवै द्वार कहो साध, बहती मनसा राखो बांध, लो मोह सब बिसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाहो, दसवीं दैदस होए आनंद, छूटे परम मिलै गोबिंद, ज्योत स्वरूपी तात्यानूप, अमल ना मलन शाह नहीं धूप, एकादशी एक दिस्तावै, तो जोनी संकट बहुर नायावै, शीतल निर्मल पया शरीरा, दूर बतावो पाया नीरा, बारस बारह उगवै सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर, देख्या तिहू लोक का पियो, अचरज पया जीव ते सीओ, तेरस तेरा यगुंब खान, अर्ध उर्द बिच सम पहचान, नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान, चौद से चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार, सासन तो कातरो ध्यान, कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान, पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरे कला सहज प्रगास, आदि अंत मद होए रहे आथीर, सुख सागर में रमै कबीर, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत, बार बार हर के गुण गावो, गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ, आदित करै भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब, अहनस अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मह वाए, सोमवार सस्य अमृत चरै, चाखत बेह सगल बिखहरै, बाणी रोकिया रह द्वार, तो मनमत वारो पीवनहार, मंगलवारे ले माहीत, पंच जोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, ना तर खरा रिसै है राए, बुधवार बुध करै प्रगास, हृदय कमल में हर का बास, गुरमिल दो एक समतरै, उर्द पंक लै सुदा करै, बृहस्पत बिख्या दे बिहाए, तीन देव एक संग लाए, तीन नदी तै त्रिवटी माहे, एनस कसमल तो वै नाहे, सुकृत सहारै, सो एह व्रत चढ़ै, अनदिन आप स्यों लड़ै, सुरखी पांचों राखै सबै, तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै, थावर थिर कर राखै सोए, जोत दी वट्टी कट मैं जोए, बाहर पीतर पया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग कट मैं दूजी आन, तौ लो महल न लाभै जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कह कबीर तब निर्मल अंग,

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा,

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे खू

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अन्न

बाद रा गया सा महला पहला कर पहला सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित मैं सर्व संभाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सा साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमया पारा सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख सुवाणा एक दात एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिने अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पय जन हर त्याया जियो तिन टूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जियो तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तानो जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनका ने कानंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड्यावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सिरहिट सब यो पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब से का जान होई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदे कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई केवड वड्डा डीठा होई कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए
वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता के वड़चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहन ना जाई तेरी तिल वड़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया तुदबिन सिद्धि किने ना पाईया कर्म मिलै नाही ठाकराईया। आखण वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा। आसा

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया। नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ, कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिउ राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत भाओ नानक बख्शे।

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौ जल, गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ, जिनको आप लय प्रमेल, तिनको काल न सके पेल, गुरमुख निर्मल रहन प्यारे, जो जल अंब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला कहो किसनो कहिए, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे, आसा महला पहला, निम्न उपाय

ऐसा गुरमत रमत शरीराओ, हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग भगत हर रंगा, अंधन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म सख्त संसारा, राम भगजन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अप

सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई पीख को पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा नाही कोए, किसवे खाली चंगा होए। मैं ता नाम तेरा आधार, तू दाता करनहार करतार। रहाओ वाट ना पावो विंगा जाओ, दरगह बैसन नाही थाओ। मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद। खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास। अहन इस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे। कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ। नानक एक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ। जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए। नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै। आसा महला पहला पंच पदे। दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही। रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै। चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै। अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही। सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही। जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही। दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही। मत विच मरण जीवन।

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुरप्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभि नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास, सच्चे तख्त

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर विडाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्से जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, फिर से मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम सामीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवि रहना, दुख सुख देवे करे सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदे, मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ, सच नाम जा नव निद पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे, गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे, नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवे, मन अटकी चै अंत विगोवे रहाओ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो, ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई, सगली सौंदी टोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै, आसा महला पहला चौपदे, विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ, आस निरासी तौ सन्यासी, जां जत जोगी तां कायां भोगी, दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा, मेरा सह जागै हो निष्परसोवा। इओ क्यों कंत प्यारी होवा, सह जागै हो निष्परसोवा। रहाओ आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होए गारी माई। हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ, प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी। गया सो जो बन धन पछतानी, अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हाँ मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जरवै पतार। तव नानक कंते मन पावै, छोड़ वडाई अपने खसम समावै। रहाओ आसा महला पहला, पेव कड़ैतन खरी ए।

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरण पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो वंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जायनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतिया दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे।

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रहै जैसे पवै उदासे। मन मेरा दयाल से ती थिर न रहै,

पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चलना हारो। पंच सखी मिलर्दन करे हा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर शेवा महला पहला। मन मोती जे गहना होवे, पौन होवे सूत तारी। खिमा सिंगार

मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेश्वर पट लेई तीरज तीरज तड़ी बंधावै कामण श्री रंग सुरमा देई मन मंदर जे

अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली जोत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसै पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, कैमद छूछै पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान भया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करै किया, सिफती रत्ता सद बैरागी, जुवै जन्म ना हारै, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धारै, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोष ना देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस ना होई रहाओ, सकता सीहो मारे पै वगै, खसमै सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वडे आई, जे को ना उतराए वड्डा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाने, मर मर जीवै ताक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खड़ दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगमे अपारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कहो गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सां शरीर, गुरमुख ता कहो लगे ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुवा

आए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोता है, थिर ना रह मन खोट कमाहे। हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब श्रेष्ठ जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुर अमृत बैना रहाओ। मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पी आया, गुरपूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सहना।

नामहीन कालक मुख माया, नाम बिना त्रिक त्रिक जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम देवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हून माया मलतारी, विण गुण जन्म मोए हंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मथ तत कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा, रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नामहीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रसकरसाई, हर हर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सा लाही।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

दुख रोग भय गत तंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुरसीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जब तो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े नहीं।

हर हर राय। नाम तेरा जब जीवे नानक ओत पोत मेरे संग सहाय। आसा महला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले ले सदावे अनहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावे। परमेश्वर कै द्वारे जे होए बतीते सो नानक आग सुनावे। भगत जना का उसका आनंद है हर कीर्तन गाए बिकसावे। आसा महला पंजवा जो मैं कियो सगल सिंगारा तौ पी मेरा मन ना पतियारा। अनक सुगंधत तन मैं लावो ओह सुख दिल समान नहीं पावो। मन मैं चितवो ऐसी आसाई प्रे देखत जीवो मेरी माई। माई कहां करो यो मन ना धीरे प्रे प्रीतम बैराग हिरै रहाओ। वस्त्र पे भूखन सुख बहुत बसेख है ओए पी जानो कितै ना लेख है। पत शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल। बिंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार। राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस। बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावै मिले प्रभु ता सब सुख पावै। खोजत खोजत सुनी एह सोए साध संगत बिन तरयो ना कोए। जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मंत्र बताया।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै सोभा मैं लोग, चोवा चंदन सुगंध बिस्था।

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टेचाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइय हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, माना रह कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको पर मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन पई तब अंत ना जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुखे अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो। गुर कृपा ते एह मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग करेंगा। सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सरसद ही पर पूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैण में हानि सह सुभाए। आसा महला पंजवा, कर कृपा हर प्रगटी आया। मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई। पाहे न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ। तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया गाए। सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाड़ परानी। जो जन्मै सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ। दिन ते

लागे। कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां, नवनिध तेरा सगल निदान, इच्छा पूरक रखे निदान। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वस्या लगे न दुखा रहाओ। जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद पावे ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहेबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूपया रंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनासी अवगात्या गोचर। सदा सलामत।

वे मोहताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर रोड़ होशै रसमाता, घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा दियो प्राणी, तेस्यों लूक जो सद ही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक कहो गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्ज आप सवारिया, पूर समगरी पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निधान।

हर आज मिलक जोबन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ महा विचित्र सुंदर।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाई है, स्थान गुरु ते पाई है, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत टहै दुख डेरा, हुक्म बूझै सोई परवान, सास सब जा का निशान, गुर पूरे हर नाम दड़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहें,

प्रभ की प्रीत पय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सद शोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड़ परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे हुए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड़े ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगसार।

वर्तन जाके केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाके एक समान, प्रभ अपने बिने अवर ना जाने, कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संति शली, ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक है नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस पेड़ त लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद ओ आनंद।

पंजवा आठ पहर उदके सुनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़ नाही बहर बहर तिस लागे पाई साल ग्राम हमार

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सभी ऊपर झूलै, ता का धूप सदा पर फुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गे राम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवां पंच पदा, जे पेंड लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवां दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवां महला पंजवां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवां, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जां कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आसा महला पंजवां। मीठी आग्या पिर की लागी, सौकन कर की कंत त्यागी। प्रे सोहागन सिंगार करी, मन मेरे की तपत हरी। पलो पयो प्रे कहया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओ अबनासी अगमे अपार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनाथ गरीब निमानी, कंत पकड़ हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना माया मोहे सब जग।

गुरु नानक बाहां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे पाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया जिस मन वसिया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावै अवर काहू पह बहु ना जावै सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासी रहाओ जा का दान निखूट नाही भली भांत सब सह समाही जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण प्रभ के सेवक दुख न चूर्ण ओट गही निरपो पद पाई है सास सास सो गुणित गई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनासे सतगुर की शरणाई रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी सब

मन बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरे माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब कै मन भावै। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुर नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ। प्रगट भया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर कौ कुर्बान। आसा घर अठवां का।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा। आसा महला पंजवा, सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो की जैदाना रहाओ। पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा, साई अलख्या पार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैण पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेव संसार।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास